भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are lying doing. To inko dono behno ko ek taraf lagao next time. Kya mata hai bhai? Aisa hai ki aap ya to yahan se aake bitha do ya wahan se aap do baithe ho to piche wo log bhalai yun dekhe na phasa yun kare hain. जरा बस मैं कहूँ कि अरे सोनी भाई बैठ रहे, मैं तो हमें ठीक है, हमें थोड़े थाने कटे उठाऊँ कभी, आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है, कितना है, क्या है, कैसा हुआ है, तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा। सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे, संग किसके साथ में रहना है, जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड सत संग। The sat, sat is the good things, bad things, everything. Sat sang, then it is said, please come with me. We stay all together. We all be together like one. Yes. Then it is okay. Otherwise, other sit and like this, do the aage you kare, phir aage bade bade aadmi hota hai na. वो बड़ा बड़े का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, मैं उसका कह रहा हूँ जो थोड़ा छोटो आदमी है नहीं, वो तो बैठो आगे और मोटो मोटो बैठा आदमी तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड, फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे, तो फिर वो इधर करे, फिर वो ऐसा करता तो। सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न Who should be here first and then second and like this. Then we have all, so this is Sat. Sat kya hai? Wo Sat kahan hai? Wo Sat kahan se aaya hai? Sat keval manushya ke liye nahi hai, janwaron ka bhi hai. Wo bhi aata hai तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है, छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन, सो तो ऑल पीपल दैट आर एवरीवेयर दे टेल टू देम देयर मदर, यस मदर बट वेयर मेक द चाइल्ड, यस इन माय लाइक दिस इवन दैट Then it is said, yes, this is very good. So child is going front and mother is behind. Taki the children can be with mother very nice and that. And not going out, then what happens is something. So sat, wo satya hota hai. Satya hi sat hai. Satya hi satya hai. Wo satya kahal ja gaya hai. तो सत संग, और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ, सभी को किस बक बट अदर वन वी विल गो दिस एंड बट गो सिट लाइक दैट। सो व्हेन वी कम यू शुड कम फर्स्ट ऑलरेडी वेयर यू आर सिटिंग, सो वेरी नाइस सत्संग। तो सत्संग के बारे में एक भजन लगाओ।
एक भजन लगाओ सत्संग का, सत्संगियों की, सत्संगियों की सन है ना भजन अपना बाप जी का है ना, हाँ तो लगाओ तो बेटा बाप जी का माधवानंद जी का है भाई। माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी, और महाप्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए, वहाँ नहीं तो वो बैठे। तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज, बट दे आर सिटी सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा। तो इतना वो जो है दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वॉटर एंड इन वॉटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी जो है ना दे कम इन साइड एंड दे टॉक द इंडियंस ऑल लाइक दिस सो डोंट गो हो नो स्कूल जाना देना कुछ करना नहीं था ओनली दोज हु आर लर्निंग वेरी पीपल सो दे वेर लाइक डॉक्टर्स एंड दिस और दिस अदरवाइज ऑल पीपल वॉज अभी भी आपको ले रहे हैं अभी भी उनको बराबर नहीं जाने देते हैं।

0: रूपावास, रूपावास में रखा है। रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे अभी भी है, अच्छा ही है, लेकिन वो थोड़ा अब डब चबड़ गया हो गया यूँ से भी जगह है। हाँ लेकिन वो नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो अच्छा ही होगा, वो भी अच्छा होगा। और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं, तो रूपावास कंट्री इज द जहाँ जहाँ वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज, वेरी मेनी कंट्रीज, तो वेर आर यू गोइंग टू रूपावास? यस माई नेम इज रूपावास इन द होल वर्ल्ड। 18 गांव वाले रूपा है वो नहीं जाने, लेकिन वो मेरा रूपावास गुजरात वो वगैरह से भी हो, लेकिन हमारे रूपावास। तो वो ठेठ तक जब ही मैं जाता हूँ कि कौन से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास, और वो चल रहा है। अब वो छोटे मोटे लोग हैं उसमें तो कुछ होता ही है ना, और होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या पता करें। तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य ही है। अब किसने वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया है, सबका नाम दिया कि किसका नाम है, कौन है रे, कि मैं मनुष्य हूँ बस। अब हम मनुष्य है, तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है। जाति हमारी एक भारत की है, और वो सभी को उसी को करूँगा मैं, आप देख लेना। हाँ ठीक है, आप मेघवाल हो, गरग से हो, जो भी हैं सभी हैं, वो है ही है, लेकिन है वो मेरा मनुष्य, मेरे देश का, तब देख लेना उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा। हाँ है कि नहीं, प्रेमानंद जी ने, हाँ प्रेमानंद जी कहाँ हैं, ए प्रेमानंद जी, अच्छा प्रेमानंद जी तो हमेशा इसका प्रेम, इसका नाम ही प्रेम, प्रेम की बोलो, हाँ तो वो इनका है प्रेमानंद जी का। प्रेमानंद जी का इतना बहुत गांव देश है, और देश में गांव बहुत बढ़िया है, और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है, और इनका मकान या इतना बड़ा है, उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है ओके, लेकिन आप देखेंगे इनको, देखेंगे कितना इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं, कितने वृक्ष है, अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का। तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में, मैं गया था कहीं, तो ये भी आए, एक बार आए, दो गए, फिर वापस आए, और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है, प्रेम की बोलो, श्री दीप नारायण भगवान की जय।
1: श्री मारवानंद जी सद

time. It's in your hand. Please support to Vishnu. That's okay. The whole world will continuously love you forever if you accept these things. And Tulasi is finally, she was in dilemma, but she convinced. Well, Mahadev, if you say that, if it is my destiny, if there is no choice, that's all right. But I need to be close. I need to be worshipped by era to era, every era, every ages, every kalpas. And that's why Tulasi accepted. And from that time, Vishnu Bhagavan remained in stone. That is, the stone is Saligram. Have you heard of Saligram? Yes, Saligram is a kind of black stone. And inside the stone, there is a fossil. And a snake, that's an insect fossil. And that is proven. And when she gave up the physical body, and the Gandaki river appeared. Her physical body is Gandaki. That's why if you go to Nepal, the Gandaki river is there. And you can find in the Gandaki river a lot of Saligram, the black holy stone. And if you break the stone, you can see inside there is a chakra, there is a mark of the insect. So, and that's amazing, isn't it? This Purana has been written thousands and thousands of years before. And the Nepal is just discovered, Nepal, how many years? The history is maybe a couple of thousands years. And Gandaki in the naming also, couple of thousands years. But you can see there is such a practical things. I did myself. I went in Kali Gandaki after reading this book. And I found out many saligrams. When we break that saligram, inside there is a chakras. And still you can yourself in your life, you can go and prove yourself. And it is saying that if you take bath in Gandaki, whatever the water is coming from the saligram, you will have the many, many lives punya. So, aapke liye kya hai? Bahut punya ko pradayak hoga. Agar Kali Gandaki mein jaake, aap isnan karoge. So, isliye, this is a wonderful story and proved story, proven story. And not only that saying, not story, not that is only conservative or somebody says in book. You can go and experiment on your own. And or you can find out here as well. So that's why in Nepal, the Kali Gandaki, there are thousands of pilgrimage goes. And at the that's origination of the Kali Gandaki is Muktinath. And in the Muktinath, you can see there is still the fire, continuous fire. It's not man-made fire. It's a holy fire. You can see there. The fire is flaming all the time. It's like a volcano. But it's not volcano because of the chemical, the fire is coming there continuously, and it is saying the fire of Brahma, Vishnu, Mahesh. And so in the river, you can see the saligram. And wherever around the world, it is supplying now, that is from the Kali Gandaki. And Kali Gandaki is Tulasi's physical body. That is after she loses her that integrity. She loses her patibrata dharma. So that Kali Gandaki river is the body of the Tulasi. And when she get the blessings, Tulasi, and from that day, Tulasi and Vishnu is together. And Tulasi went to Vaikuntha. And she's worshipping everywhere around the world. You also love Tulasi, isn't it? Basil. The basil hops in Europe, in America, in Australia, any countries nowadays. The basil have got different species. But if you find the original one, that is a wonderful. And newly invented here, there is in India, there is one resource center called National Center of Biological Science that did the experiment. That short form is NCBS. So, and that technology, that laboratory tested, and Tulasi have got such a power, it has got antifungal, antibiotic, or anti-cancer elements in it. That's why it's already hops, popular hops. And later on, that Tulasi is acceptable, and when you die also, the Tulasi is very important. And in everyone's house, there is Tulasi in Hindu's house, in Sanatani's house. And the Tulasi is the continuously it provide you oxygen. Jai Boliye Narayan Bhagwan ki. Jai Boliye Tulasi Mata ki. Jai Namastulasi Kalyani Namo Vishnu Priye Suve Namo Moksha Prade Devi Navasampada Pradayike Namastulasi Devi Namo Vishnu Priye Suve. So it is the beloved ones of Vishnu now. So that's why we celebrate the Tulasi from that time. Continuously, she is serving this universe. Many
She is avoiding, she is healing, she is removing many difficulties, cancers, all the sickness. That is, she has got the power. That's why if you are also flying back to Europe, it's better if your quarantine, if your custom allow you. So take some tulasi seed with you, if you haven't already done this. And tulasi is the wonderful, it need to go everywhere. And this is for the human welfare. Everyone deserves to take advantage from this divine herbs, tulasi. That's why tulasi is worshipped every Krishna temple, every Vishnu temples. And tulasi is offering to Saligram. And Saligram is amazing holy stone, black stone, that is not available anywhere around the world except Himalayas in the Kali Gandaki River in Nepal. So anytime if you go, you can find Saligram. Maybe you can see and have a look somewhere else here also. That is what is the Saligram. So that is the holy Vishnu's stone. That because of the curse of the tulasi, it is saying that as a Vishnu. That's why many people they keep at least 5 Saligrams. The 5 Saligrams, one represents Shiva, one for Surya, the sun, one for Devi, one for Ganesh, and one for Vishnu. This Pancha Devata. So everyone they worship Panchayan in their home. In Panchayan, that's a 5 Saligrams. So everyone can keep in Saligram and Tulasi. It has got medicinal benefits, herbs, and also whenever you sick, whenever you are a problem, that you go to hospital. In hospital, what they do first? Then they supply first is oxygen mask. So nature will give you oxygen masks in your home. When you plant Tulasi in front of your door, in your flower plant, that is continuously for free, without ambulance, without doctors, without anything, she's going to give you free. That Tulasi is oxygens, and that herbs is useful for your anything, for fever, for tonsillitis, for back pain, for any difficulties, even cancer. It shows like antibiotic there, antifungi or antibacterial Tulasi. If you put in tea, there is Tulsi tea as well. If you wear Tulasi mala, that also helps your blood pressure. If you put always 2 pieces of Tulasi, that removes the bacteria and helps you. The Tulasi is the amazing herbs. When you know this one, so no matter in this world, Tulasi doesn't choose any caste, culture, group, nationality or gender. It is for everyone, everywhere. It is helpful. So you can utilize this is and Tulasi's Mahima. And Jai Bali Siyavara Ramachandra Ki Jai Vishnu Bhagavan Ki Jai Jab Sankhachud Ko Jab Se Sankhachud Ka Bal Bahut Bal Gaya Bada Tha Kyunki Patni Vrata Dharma Se Tab Kya Ho Gaya Ki Vishnu Bhagavan Chhal Karne Ke Liye Gaye Jab Vishnu Bhagavan Ne Jo Krishna Kavach Chhin Liya Vriddha Brahman Ban Ke Uske Baad Me Apati Ban Kar Ghar Me Chale Gaye और दानव शंखचूड़ के भेष धारण करके तुलसी के घर में चले गए. तुलसी के घर में चल के तो तुलसी आ गई कि उनके स्वागत करने के लिए. विष्णु भगवान के उसने तो नहीं देखा, उसने तो सोचा कि हमारे पति आ गए. तो भूले वाली तुलसी ने क्या किया, पति आ गए समझ के उसको सलाम कर लिया, पाँव धो लिया, घर में लेकर गया, खाना दे दिया. रात में फिर रतिक्रिया किया और रतिक्रिया करने के बाद में जो पति व्रता धर्म है पत्नी का नष्ट हो गया. इसलिए कोई भी विवाहित नारी तो अपने पति छोड़ के किसी के साथ में रहती है तो उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाता है. ऐसे करके अगर पति भी कहीं किसी को संबंध रखता है अपने पत्नी होकर भी, तो उसका भी पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाता है. तो इस दुनिया में पति व्रता धर्म और पत्नी धर्म सबसे शक्तिशाली है. जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी और जो पार्वती और शिव, और ये आप देख सकते हैं शंखचूर और तुलसी में भी, जब इनका पत्नी व्रत धर्म, जो पति व्रत धर्म नष्ट हो गया, तो शंखचूर दानव भी कमजोर होने लगा. जय बोलिए भगवान नारायण की जय. तो इसका अर्थ क्या है कि जब आपको घर में पति पत्नी के बीच मेल है तो दुनिया कोई नहीं बिगाड़ सकता है आपको, ना तो पड़ोसी बिगाड़ सकता है, ना तो भाई, नहीं तो कोई. जब पति पत्नी में कलह पैदा हो गया तो शक्ति छीन लेता है, तो घर फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है. और जितने भी आप देखावटी के लिए पति पत्नी हो जाते हैं, और पति के दुश्मन पत्नी ही हो जाती है. तो इसलिए बोलते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और दुश्मन में क्या फर्क है, तो वो आदमी ने बताया कि दुश्मन दूर में रहता है और पत्नी साथ में सोती है, लेकिन दोनों दुश्मन है. तो मतलब जिसको साथ में प्यार नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये शत्रु के रहता होता है.
इसीलिए क्या है कि जब मिलन होता है वो शक्ति बन जाता है। तो विष्णु ने भी वो शक्ति छीन लिया तुलसी को। तुलसी बहुत गुस्सा में आ गई जब पता चला कि ये विष्णु तो छल करके मेरा धर्म को लूटने के लिए आया, तो आप ऐसा पाप करने के लिए आया तो मैं श्राप देता हूं। तो उसने श्राप देने से पहले विष्णु ने बोला कि तुलसी इससे उपाय कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपके पति दानव ने सारे संसार में क्या किया कि परास्त कर दिया, देवता के लिए कुछ जगह ही नहीं है, इसलिए क्या है कि मैंने ऐसा करना पड़ा, माफ दीजिए। तो तुलसी ने क्या किया, श्राप कर दिया, श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में क्या श्राप दिया, पाषाण होके रहना पड़े, दैट मीन्स तो यू नीड टू बी ए स्टोन, तो आप पत्थर होकर रहना पड़े। तो पत्थर होकर रहे तो उसी के श्राप से विष्णु भगवान शालिग्राम होकर रहे, इसलिए शालिग्राम को हम क्या है कि विष्णु भगवान के प्रतीक माना जाता है। तो उसी समय में जब श्राप देते समय में शिवजी आ गए और भोले भाले शिवजी ने क्या है तुलसी को समझाया, तुलसी ये आपका कुछ भी दोष नहीं था, लेकिन क्या है कि धर्म रक्षा के लिए विष्णु ने भी ये किया है, इसलिए आप अब क्या करो कि कहीं कोई परपुरुष से जाने से शरीर क्या है कि अपवित्र होता है, लेकिन मन नहीं हो सकता है, आपको मन नहीं था, आपको मन से नहीं किया है, इसलिए क्षम्य है। इसलिए कभी कभी क्या होता है तो गुंडे लोग आके रेप कर देते हैं, उसका मन नहीं रहता है, लेकिन शरीर तो अपवित्र हो गया लेकिन मन नहीं रहता है, तो मन को हम माना जाता है, स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर भगवान भोले ने भी वही किया कि आपका शरीर त्याग कर दो, उसने शरीर त्याग कर दिया, वही त्यागा हुआ शरीर गंडकी बनकर बग रही है अभी, सत्ययुग से अभी तक गंडकी वही तुलसी का शरीर था, और गंडकी में ही शालिग्राम मिलता है, गंडकी नेपाल में पड़ता है, नेपाल के पोखरा के नजदीक मुक्ति क्षेत्र धाम है, वही धाम से गंडकी नदी बहती है, वो गंडकी के शिविर में शालिग्राम मिल जाता है, और शालिग्राम के अंदर में आप तोड़ के देखो तो वहां पे चक्र सुदर्शन चक्र दिखाई देता है विष्णु का, इसलिए ये कोई बनी बनाओ बात नहीं है, आप खुद जाके अभी देख सकते हैं, कलिकाल में कलिकाल का देवता साक्षात आप देख सकते हैं शालिग्राम को, और शालिग्राम के अंदर चक्र देख सकते हैं। अगर कोई भी शालिग्राम आने वाला नदी गंडकी में जाके, नेपाल के गंडकी में जाके स्नान करेगा तो वो पुराण में लिखा है आपको 100 योनि तक आपको धर्मात्मा बनकर रहने का आशीर्वाद मिलेगा और को पाप सारा छूट जाएगा। तो इसीलिए उस समय से तुलसी और भगवान विष्णु साथ में रहने लगे, और शिवजी ने बोला था कि तुलसी आप अब संदेह नहीं करो, भगवान विष्णु को स्वीकार करो, आप भी वैकुंठ चलो, और तुलसी ने बोला कि मेरा सारे समय में मेरा पूजा होना चाहिए, चलो ठीक है, वही आशीर्वाद मिला। तो आज तक भी हम तुलसी को पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के साथ में रखते हैं, और तुलसी आपको खान पान में रखे तो क्या हो जाता है, वो आपको दवाई हो जाता है, आयुर्वेद का औषधि है, दवाई है तुलसी, आपको कैंसर से लेकर सारा रोग को निवारण करता है तुलसी, घर घर में रखे तुलसी ऑक्सीजन देता है, तुलसी आयुर्वर्धक है, तुलसी क्या है कि आरोग्य देता है, इसीलिए तुलसी चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, सबके लिए समान अवसर समान लाभ देता है, तो सबके घर में तुलसी होना चाहिए। तुलसी पूजा करे नहीं करे फिर भी लाभ देती है, पूजा करे तो विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं, आपको पाप भी नष्ट हो जाता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन से तुलसी और शिव जी साथ में रहने लगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। सो वी गोइंग टू चैंट नारायण, कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कवच से, वजह से ये युद्ध में शंखचूर दानव नहीं हारा था, अब क्या है शंखचूर दानव हर गया और कृष्ण कवच विष्णु के पास में रह गया। कृष्ण इतने शक्तिशाली पहले भी थे, अभी भी है, और कवच शक्तिशाली है। तो कृष्ण भगवान को जय बोलो, जय बोले कृष्ण भगवान की जय श्री।

0: So still, it means if you go to Nepal, directly you can observe the Kali Gandaki and its Shaligram. And that Shaligram is now in Museum of the London and Museum in Australia. And many countries, they are the exploring and innovating and experimenting. And it is saying that when the ocean was moving, that time the plate of this earth was moving. That time the thousands and thousands of years, the insect and all the creatures, they trapped and it became the chakra. So that is in Puran. So the there is also the history also showing this one, research also showing this one. So it is saying there is a quite a similarity. And this story, this book is written himself, Mahadeva, and later on Vedvyas wrote this compiled this Shiva Puran. And he wrote this thousand years before. And Kali Gandaki also thousand years before. So it's a quite a similar and easy to understand and believable. The Tulasis and this wonderful story. There is a little bit tragedy of Tulasi, but it is saying that's good cause. And also Tulasi is worshipped now. So what about some other Puran? So because we are daily using Tulasi, and all the Saiva, all the Vaishnava, all people, they know the Tulasi, the basil, herbs nowadays. Ayurveda accept, and they are making now not only the mala, so they are making lots of Tulasi's tea and Tulasi's powder and Tulasi's some herbs and Tulasi's tablets. So that's why Tulasi is quite a bit concerned nowadays. So that's why we'd like to explain some other Puran's story as well. So in Swastani Puran, in Swastani Vratakatha, so have you heard the Swastani? In Swastani Puran, it says like, so Tulasi's origination, it talks about Tulasi. There is the story is different, but the nature is same. There was a Danava, demons, and his name is Jalandhar. So Jalandhar was a brave demon. And Jalandhar's wife is Brinda. And Brinda was also a beautiful woman. He is also maintaining Pati Dharma, Pati Vrata. So Pati Vrata or Pati Dharma. So for man, this is Ek Nari Brahmachari. So we were married, he's also Brahmachari, but with only one woman. So woman also, she is also Brahmacharini, just for one husband. So that is, so which is very powerful, as we mentioned before. So Brinda also maintaining that Brahmacharini. And also Jalandhar was also, there was a very brave. But he was the demon, he always saw the demon nature. He used to go God's place, houses, and destroy the temples, and he is torturing the Mahatma, Rishi Munis, and doing so many unjust things, violence. So there was, the time was a little bit difficult. And everyone went to Shivaji, and Shivaji told that, well, I cannot do anything now, just you need to go and ask to the Vishnu. Because I gave the blessing to him, and he is the devotee of Shiva. So there is the problems. So that's why what happened is he need to go and worship. So Vishnu, everyone went to Vishnu. And Vishnu says that, well, I cannot help you. Only Mahadeva can kill the Jalandhar. Without Mahadeva, no one kill. But I can help you one thing. That is, he has got the Patni Vrata Dharma. So without destroying the Patni Vrata Dharma, without destroying the strength of the truth and the confidence and the spirituality of wife, I cannot do anything. And Vishnu told that, then everyone, the goddess, went to the Mahadeva. Oh, the Mahadeva, please help us. Vishnu going to help to destroy the Patni Vrata Dharma, Pati Vrata Dharma, both of them. So Vishnu accept and Shiva also accept. They're ready. And Shiva invited in the battlefield to the Jalandhar. And Jalandhar went to fight. And they are starting fighting. And started fighting. And hundreds and thousands of years that passed away. So but Jalandhar was so brave. Still, he did not defeat it. So ye Puran hai ki Shiv Puran mein jo aata hai ki Tulasi Mata Shaligram mein kaisa pyari ho gayi. तो वही है कि वो शंखचूड की पत्नी थी और विष्णु ने छल करके उसको अपने बनाया, उसका पत्नी धर्म नष्ट हो गया और उसने श्राप दे दिया. श्राप देने के बाद में विष्णु भगवान क्या है कि पाषाण बन गए. पाषाण विष्णु क्या है कि वो शालिग्राम में रहने लगे और तुलसी माता भी उनके पास में रहने लगी, बैकुंठ में चली गई। इसलिए आज तक हम क्या तुलसी इस्तेमाल करते हैं, ये शिव पुराण का कहानी है। शिव पुराण का अमृत कथा ये बोलता है कि ये तुलसी ने जो शरीर देह हत्या किया था वो गंडकी था। गंडकी अभी नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र से बहती है, शालिग्राम वहीं मिलता है। दुनिया में एक ही जगह है कि असली शालिग्राम मिलने का जगह, तो हम जाके खुद अपने जीवन में परीक्षण कर सकते हैं। कोई बनी बनाओ बात नहीं, कोई ये कहने वाला कथा नहीं है कि ये शिव पुराण में जो लिखा है वही अभी भी सत्यचित सत्य को हम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए शिव पुराण में ये लिखा है, तो दूसरा पुराण में क्या लिखा है इसके बारे में, तो हम तो क्या है कि अभी आधुनिक दुनिया में हर चीज को परीक्षण करके ही लोग क्या है कि समझते हैं, विश्वास में लेते हैं। तो स्वस्थानी में, स्वस्थानी पुराण में क्या लिखा है कि वहां पे भी ऐसे ही कहा कथा है, जालंधर नाम का दानव था बहुत बड़ा, वो क्या करता था संसार को दुख देता था और देवता को बहुत दुख देता था। ऋषि मुनि महात्मा शिवालय सार को क्या था वो तांडव करता था उसमें। तो इसीलिए सब लोग क्या हो गए, बहुत दुखी बन गए। और उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या है बैठक हो गया, और बैठक के बाद में उन्होंने क्या किया कि जालंधर के पास में तो पत्नी व्रता धर्म है, पति व्रता धर्म है, जब तक वृंदा के पति व्रता धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये बहुत बहादुर रहेगा, बहुत सामर्थ्यशाल रहेगा, इसीलिए विष्णु के साथ में जाओ शिव जी ने बताया। और सारे देवगण विष्णु के पास में गए, विष्णु ने हाँ कह दिया। उसके बाद भी फिर विष्णु ने छल करने के लिए गया। जय बोले विष्णु भगवान की जय। सो एंड देन विष्णु स्टार्टेड टू डिस्गाइज अगेन, दैट इन स्वस्थानी पुराण इट सेज लाइक एंड विष्णु चेंज हिज अपीयरेंस एंड ही लुक्स लाइक एग्जैक्टली द जालंधर एंड ही वेंट एंड वेन द टाइम द वृंदा सो द विष्णु, विष्णु बिकेम व्हाट हैपेंड यू नो, he faint, he lost there. She was so beautiful and that sort of beauty the Vishnu that did not tolerate and he faint there. And Brinda surprised, who is this? If this is my husband, he cannot be faint. He should not be unconscious. He, my husband is used to. And then before coming Brinda, before saying to Brinda, Vishnu disappeared and ran away from there. So, and he was waiting for the second chance. And second chance, then after a long practice, he practiced and he gathered courage and he went to the Brinda's house. And with bravely, oh Brinda, I just arrived, I'm very tired with the Mahadev fight, can you please give me some food, snacks, coffee, tea, whatever you wanted? So he ordered, he asked Brinda. And Brinda said, well, my Swami, come here, I'll offer you my lord, I'm waiting for you, you must be tired, I'll give some good massage, come here. And she gave good fruits and everything, and she did the arati for her husband, and everything done, and that Vishnu did his notorious things, his performs that, and the Brinda, overnight, Brinda finishes her Pativrata Dharma, finishes. And Jalandhar was fighting over there with Mahadev, and Vishnu is in Raslila with Brinda, in the Jalandhar's discuss appearance. And in the morning time, again the Vishnu sent message or information to Shiva. Oh, the Shiva, now the project is done. Then you can fight. So, and then Mahadev started to fight. The Danav became very weak and he fell on the earth and died there. And the sound came. The big sound, massive sound came. And that went to the Parvati's, that went to the Brinda's house. And that was his pati. And she saw his husband is dying there and Vishnu is acting there as her husband. So that time she is very unhappy and she started to curse. But the Swastani Puran said that she cursed four cursing. There is not only one. She Puran says that only she, the Vishnu need to remain as like the Pasar, the stone. But there it says like the in Swastani Puran says she cursed four things. Oh Vishnu, you are the strong hearted, you don't have any kindness, that's why better you remain as like a stone and go and stay in Kali Gandaki in Nepal. So Vishnu accept that as a Kali Gandavi Saligram. And also the Brinda course, you are like the tree, like you didn't move, so that's why you need to remain, you're supposed to remain as a tree in the earth. so that you cannot move anywhere else. Because you disguise and tree cannot move. So that's why I curse you. You better remain as a tree. So, फिर उसके बाद में जब वृंदा को श्राप से क्या हो गया कि स्वस्तानी पुराण में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. शिव पुराण में जो जो बात है वही है, लेकिन स्वस्तानी पुराण में जब वृंदा का जो पतिव्रता धर्म विष्णु ने नष्ट कर दिया, उसके बाद में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. पहला श्राप था कि ये विष्णु छलकारी तो जाके पत्थर बन के रहना, तो पत्थर बन के रहना पड़े तो उस टाइम से पत्थर शालिग्राम के रूप में रहे. फिर दूसरा श्राप था तेरे को पेड़ बन के रहना पड़े, तो पेड़ बन के रहना पड़े का मतलब कि पीपल बन गए विष्णु जी. और दूसरा तीसरा श्राप था कि आप ग्रास बन के बनना पड़े, तो इसलिए कुश ग्रास भी तुलसी कुश ग्रास भी विष्णु का रूप है, कुश ग्रास बन के बन गए. और ऐसा करके उसने श्राप दिया आप कि झाड़ होकर रहना पड़े, घास होकर रहना पड़े, तो तुलसी बन गए. इसलिए चार श्राप था. तो वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान श्राप मोक्ष के लिए पहले से अभी तक को मोक्षता के लिए रहे हैं. तो वृंदा कर्स तो विष्णु फोर कर्सिंग देयर. फर्स्ट थिंग इज बेटर यू रिमेन स्टोन, एंड देन सेकेंड ट्री, एंड थर्ड वन इज ग्रास. सो दैट्स व्हाई ग्रास द यू नो द ग्रास इज कुश ग्रास. द ग्रास कुश ग्रास इज ऑल्सो टेकन एज अ विष्णुज इनकार्नेशन. And that's why in prayer, everywhere, we use the kush grass. As we mentioned earlier session is, kush grass is also medicinally, is therapeutically very useful and very wonderful herbs. And similarly, she calls the grass, bush. The bush is tulasi. Tulasi hokar rana pade, kush hokar rana pade, aur people ruk hona pade. Isiliye, is duniya mein people ko, tulasi ko, saligram ko, aur क्या है कि हम जो पीपल को रुख सालिग्राम को तुलसी को कुश ग्रास को विष्णु के रूप पे इस्तेमाल करते हैं. ये आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, आपको बीमार ठीक कर देता है. और तुलसी खाना में डाल के खाए आपको बात रोग ठीक हो जाता है. तुलसी घर में रखे आपको चट्यांग नहीं आता है आकाश से, और कोई भी विस्मत नहीं आता है, और भूत प्रेत पिशाच नहीं आता है. इसलिए कुश ग्रास चाहे जिसी धर्म का इंसान हो तो वो रखे तो उसके लिए लाभ होगा. तुलसी भी ऐसे करके लाभ होगा. सो फ्रॉम दैट डे विष्णु स्टार्टेड टू मोक्ष के लिए आ गए. एंड देन ही स्टार्टेड टू रिमेन तुलसी पीपल सालिग्राम एंड कुश ग्रास. सो नाउअडेज इफ यू हैव टू प्रे विष्णु नॉर्मली यू गो टू एंड वर्शिप. एंड इट इज सेइंग विष्णु तुलसी पीपल इज अ इंडिकेटर ऑफ विष्णु. That's why that is the only tree in this universe that gives continuously oxygen. The other tree gives carbon dioxide as well. But people, that continuously. That's why meditation can be successful. The Buddha meditated where? Under the tree of banyan tree, the people tree. So that's why under the, that is easy. Without food also you can take oxygen. And without water, without food, also you can meditate. So the meditation becomes easier under the tree of the banyan tree. And also according to the astrology, if you have the mangalik, if you have that some difficulties in conjugal life, if you supposed to suffer some difficulties in your conjugal life, and there is a provision, you go and marry with the people. So people is Vishnu, and Vishnu will take the responsibility. And that is the because the course of the Vrinda. That's why any difficulties you have got husband and wife, the negativity will, the burden will carry by the people tree, and you will be free. If you Google that, why people does the banyan tree wedding, that's the mystery. तो इसीलिए क्या है कि वेद पुराण में भी बताया गया है कि पीपल क्या है, सबसे बड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय जनहितकारी सर्वकालिक सर्वदेशीय और सर्वप्रिय वृक्ष है. जो वृक्ष आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है. दुनिया में सारे पौधे पेड़ क्या करता है कि रात में और दिन में अलग अलग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन पीपल का पेड़ कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन हवा देता है. जो हवा मानव जीवन के लिए जीने के लिए अत्यावश्यक जरूरी है. पीपल हैव गॉट द ग्रेट वैल्यू. सो दैट्स व्हाई इन हवन ऑल्सो व्हेन यू डू हवन देयर नीड्स टू बी पीपल्स वुड. People woods, tulsi woods, kush grass, tulsi wood. So when you death also in cemetery, if your body is cemetery cremate with the wood of the people, kush, tulsi, it says like it will be purified your body. And spiritually you will go in heaven, Sivaloka, Vaikuntha. So that's why in the daytime, many people in India, in other places, they collect some wood, little bit tulasi, little bit that panchapallav is. People मरने के समय में क्या है कि थोड़ी सी भी पीपल के पेड़ लकड़ी और तुलसी की लकड़ी साथ में रख लो और चिता में कोई भी किसी का भी चिता पीपल का लकड़ी से तुलसी का लकड़ी से उसमें कुशकाश रख के उसको चिता जो चिता दहन होता है तो वो वैकुंठ लोक जाता है. तो वो तो स्पिरिचुअली है. इफ यू डोंट बिलीव, अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या है कि जहाँ पे पीपल को जो बॉन होने से जो हवा आता है तुलसी से और कुश से उससे वायुमंडल को साफ रख देता है, वो गंध को दूर कर देता है, इसलिए वायुमंडल का कीटाणु नुकसान कर देता है और ओजन लेयर को भी टाल देता है. इसलिए पीपल के ट्री बहुत अच्छा है, हवन के लिए समीदा बना देता है. जय बोलिए पीपल भगवान की जय. सो दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट. इवन you go and if you have the measurement of the oxygen that has been done many times in Australia also did. So if you take that level of oxygen near close to the peepal tree or basil tree, the tulsi ke nazdik jaake check kare, so you will get the high temperature, high level. So that's why always tulsi is beautiful and then people is beautiful. So it says no matter whatever story is connected, but that is a wonderful gift from this universe, for the universe. So meditating under the banyan tree and bringing the kush grass in your flower pot and planting the tulasi kush grass is wonderful. That's why our saint and rishi munis, they ate that every prayer you need to have leaf of the tulasi, leaf of the peepal and kush grass. That's a compulsory. So if we don't find, that's okay. But if we have that one, that's a wonderful, perfect prayer. So in the kalasa also, that we put that, if you see that in the kalasa, there is a 7 leaf. If we don't find the 7, we'll put the 5. So in the 5 leaf, that is also panchapallav. Mango, and peepal, and aak, and chaap. So tulsi, everything goes there. So that's why the leaf is connected with Ayurveda. And therapeutically, which is wonderful. And so that's why when this value goes to the Western world and there is expensive, in you might came from the Japan, in Australia and some other country, Canada. Nowadays the gardener, they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree. It takes 1,000 to 2,000 for one plant. So what a valuable now, isn't it? So better you can go and darshan here. You are India. While you are in India, you can see and feel that's a tree, the people tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. Isliye people ke rukh mein dhyan karne se, people ke rukh ke niche baith ke dhyan karne se, swas prashasan mein aashwasan to yahi hai. Aur people ke kya hai? People mein Brahma, Vishnu, Mahesh ka bhi baas hai. इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान जो नेपाल में जन्म हुआ था उनका, उनकी उन्होंने भी ध्यान किया, ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्त किया. कब प्राप्त किया? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में. वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जो बोध गया में आए, आकर मेडिटेशन किया था. तो ऐसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में, उनको जन्म हुआ था, पूर्णिमा के दिन में ही उनका मृत्यु हुआ था. इसलिए कि वैशाख पूर्णिमा वैसे भी अस्पिस से, उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करे तो होता है. इसलिए फिर दूसरा चीज है, जब भी शनि संकटा का जो आपको समस्या है तो ज्योतिष विज्ञान भी वही आपको शिकायत करता है कि शनिवार के दिन में जाके पीपल के पेड़ में पानी गिराओ. तो पानी के कमी होने से वो आपको धर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है. जब आप सुबह शनिवार के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको सारा नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो और जो प्लैनेट से आया हुआ कोई भी नेगेटिव वाइब हो दूर हो जाता है और आपको अच्छे ऑक्सीजन मिल जाता है. इसीलिए आपको ग्रह पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं. जय बोलिए पीपल भगवान की. सो इट इज सेइंग दैट इन एस्ट्रोलॉजी आल्सो, इफ यू आर सफरिंग सम प्लैनेटरी दैट इल इफेक्ट, देन यू कैन गो अंडर द बनियन ट्री on Saturday and offer water. It is saying that the remedy, one of the remedy of the Saturn planets to remove to Graha Pida. So why it is fruitful? Because when you go on Saturday, that Saturday morning, it is saying there is the God is residing in the trees, on the branches. If you don't believe, if you don't want to believe, that's fine. But still you will get the same benefit that the oxygen will come there early in the morning. The great oxygen of the peoples. And also, if you pour the water, that's good. You are giving the watering the plant. And that's also dharma, obviously. And definitely you will be protected. So that's why the everything is and everything that has got science and it is practicing nowadays heavily and widely. Jai boliye people Bhagwan ki.
1: Jai.
0: Now we'll have one bhajan. And we'll go continuously. We have got, we finished many chapters today. So which is important also, we'll not have time some other time to read in detail. There's a long, long verses, and also it need to be, I'm trying to translate instantly all the Sanskrit slokas and these verses. Okay, so we'll go for bhajans. Hari Om.
1: Bhagwan ki jai. Shri Deep Narayan Bhagwan ki jai. Purisha Mahadeva ki jai. Shri Madam Krishna Bhagwan ki jai. Vishnu Guru Mahamandaleshwar Paramahansa Sri Swami Maheshwar.

0: Омбале, Шри Шри Дипнара, Бхагаване Киджа, Шри Шри Дева Пуриша Махадева Киджа, Шри Шри Мадав Кришна Бхагаване Киджа, Вишва Гуру Махамандалешвар Парамхасри Свами Махишвара Нанджи Гуру Дева Киджа.
1: Jai Bole Bhole Baba Ki. So in Shiva Puran, whatever talks, the Swastani Puran also the same thing as I mentioned before. It teaches us how we can remain all the time in a deep spiritual value. The life is very short and we came in this universe that for a short life. So it is saying that in the sky, whatever light gives by the star, that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you mean, the change your vision, visuality, to Shiv Puran हमारे लिए और सारे वेदादि वेद क्या करता है कि हमारे लिए जीवन कैसा सरल बनाना है और शिव जी की तरह कैसा रहना है. और शिव जी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के और कभी शिव बन के मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ. तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का. इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा वो हो ही नहीं सकता, ब्रह्म एक ही है. तो इसलिए ब्रह्म एक है तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है. वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है, सारे शास्त्रों ऋषि मुनि संतगण महात्मा सारे समय समय में उपदेश देते आया है इसके लिए. फिर भी जब संदेह रहता है तो संदेह क्या है कि इस कार्य बिगाड़ देता है, संदेह ही क्या है कि धर्म का नुकसान करने वाला है. तो इसलिए संशय आत्म विनश्यति ही, तो किसने बोला है तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्म द्रवीड हो जाता है, मन बिगड़ जाता है. सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट, व्हेन यू ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू. इट इज सेइंग दैट we always celebrate Hanuman Jayanti, isn't it? So Hanuman is a bhakta of Rama. We always celebrate Hanuman Jayanti. But in similarly, Arjun also the very close friends and bhakta also the Krishna. So why we cannot celebrate Arjun Jayanti?

नमस्ताराय नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय नमः शिवाय दशभद्राय च नमः पार्थाय च वार्थाय नमः रुद्रनाय च उद्रनाय नमः स्थिरज कुल्याय नमः चक्रभ्याय च भैन्याय च नमः श्रीगत्याय च प्रभाय च नमः किग्गुसलाय दक्षिणाय च नमः कपर्दिन च ब्लुस्ताय च नमः हिरण्याय च प्रपत्याय च नमः वर्ज्याय च गोष्ठाय च नमः सल्प्याय च केशाय च नमः रेदचाय नृक्भ्याय नमः कृट्याय काट्याय च नमः गव्वरेष्ठाय नमः सुख्याय च हरद्याय नमः पाकुतभ्याय नमः लोप्याय च ओलप्याय च नमः ऊर्भ्याय सूर्भ्याय च नमः कर्णाय च ब्रह्मशदाय च नमः उद्गरवाणाय च विघ्नतये च नमः नमोस्तुभ्यो जयतुजयो नमोस्तुभ्यो जयन्द्रक्षेजयो नमोस्तुभ्योजयन्द्रक्षेजयो ओम स्वाह भुवः भूहु ओम मा वैकुं सोम प्रति तव मनस्तनो खुभ्रता प्रजामन्दः सजमयि एकतिरुद्रभागः सहस्ररामिकया तञ्जुगुस्वा एकतिरुद्रभागः अगुस्ते पशुवभ्रद्रमदेवशवदेवं त्र्यम्बकं वा जथानुस्कृजान श्रीस्कृत्यां विवसायाद विकजमजि विकजुङ्गे स्वायभृगाय विकजं वा सुखं मे काय मेक्यै त्र्यम्बकञ्जामये सुगन्धिं मुष्टिवर्धनं वा उर्वार्कमिन्द्रान् मृत्युर्मुक्षिमां प्रदात त्र्यम्बकञ्जामये सुगन्धिं पतिवेदनं वा हृदयाग्रेण पशुपतिंग्रत्सनहृदयेन भुवञ्जगना सर्वं वचनाभ्यामीशानमन्युना महादेवं दर्शभ्येन ग्रन्थैवं वसिष्ठुना वसिष्ठनुशिङ्गिनि कोशाभ्यं माकुरल्लोहितमित्रकुं सौभ्रतेनेन्द्रं दौभ्रतेनेन्द्रं प्रक्रीडेन मृदो बलेन साध्यान् प्रमुदा भुवस्य कण्ठे कुरुदस्यान्ता भारत्यं महादेवस्य जाग्रत्तिर्भस्य वनष्टोपशुपते प्रीतिदा लोम्ब्या स्वा लोम्ब्या स्वादे साधुजे स्वा लोहिदाय स्वा लोहिदाय स्वामेदुभ्या स्वामेदुभ्या स्वामागुदेभ्या स्वामागुदेभ्या स्वा ओम बाजशमे प्रसव शमे परयत शमे प्रतिशमे दशमे कृचमे स्वरशमे श्लोकशमे सर्वशमे त्रुतिशमे ज्योतिमे स्वचमे जितने उलम्बा प्राणशमे बाणशमे व्यानशमे जमे त्रण प्राणशमे बाणशमे व्यानशमे शमे तन्म आदिन वाक्तमे मृचमे सुक्षमे श्रोत्रंजमे भक्षमे बलंजमे जितने उलम्बा ओदशमे सजमा ओदशमे सजमा आत्मा जमे तनुशमे सर्मज विरमे जमंगान स्थिर ओदशमे सजमा आत्मा जमे तनुशमे सर्मज में ब्रह्म जमंगान जमे स्थिर जमे परुकु किसमे शरीरान जमाशमे जरे जराज में जितने उलम्बा ओम जैष्ठियंजमा आदिवितियंजमे मनुष्यमे भामशमे वशमे जेमाजमे महिमाजमे प्रतिमाजमे प्रेकमाजमे द्रागिमाजमे रुद्धंजमे रुद्धशमे जज्ञेर्गुलंदाम्नाम्।
ओम सत्यं चमे श्रद्धा चमे जगत चमे धनं चमे विश्वं चमे महः चमे क्रीडा चमे मोदि चमे जातं चमे जनक्यमानं चमे सूक्तं चमे सुकृतं चमे जज्ञेरिगुलुन्दां मृतं चमे क्षमं चमे नाम चमे जीवादि चमे दीर्घा

0: शंभु।
1: जब तक श्रृंगार करता तब तक कोई स्तोत्र गाओ भैया। जब तक श्रृंगार कर रहा हूं तब तक कोई बढ़िया सा स्तोत्र गाओ।
2: हाँ जी समझी।
3: I need more water. It's enough.

श्रीनीलकण्ठाय वृषाध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय. वसिष्ठकुम्भोद्भवगौ तमार्य मुनीन्द्रदेवा रचितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वा ललनोचनाय.

अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिकऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवतारष्टुप्छन्दः सीतासक्ति श्रीमानहनुमानकीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रपाठजपे विनियोगः। ॐ ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशतनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोपसानं नवकमलधरस्परदिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रम्। ॐ चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्लविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापादकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूणधनुर्बाण पाणिन्नक्तञ्जरान्तकं त्वलीलया जगत्प्रादुर्माविर्भूतमजं विभुम् रामरक्षात् प्रणिप्राज्ञा पापग्नेयो सर्वकामदां शिरो मेरागपादो पालन्दशरतात्मज कौशल्येयो दृशोपादो विश्वामित्रप्रेश्रुति ग्राणं पादो मुखत्रादामुखं सौमित्रिवत्सल जिह्वां विद्यानिधिपादो कण्ठं व्रतबन्धित स्कन्दौ दिव्यायुधपादौ भुजौ भग्नेशकारमुख करौ सीतापतिपादो हृदयञ्जामदग्निजित् मद्यं पादु क्रद्धुं सीनाभीं जाम्बवदाश्रय सुग्रीवेशकटिपादो शक्तिनि हनुमत्प्रभु ऊरूरगुत्तमपादो रक्षाकुलविनाशकृत् जानुन्नीसेद्गत्पादो जङ्गेदशमुखान्तक पादौ विभीषण श्रीद पादु रामो किलम्बभु एतां राम लोपेतां रक्षा यः स्मृति पठेत् सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलभ्योम चारण षद्मचारण न दृष्टमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामपि रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो निलिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्ना विरक्षितं यकण्ठेदार्यतस्य अगस्ता सर्वसिद्धयः वज्रभञ्जरनामे दय्यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताग्नि सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामि मां हर यथा लिखित्वान् प्रातः प्रबुद्धो बुद्धकौशिक आरामकपिलवृक्षाणां विराम सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामश्रीमासनप्रभु तरुणोरूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलौ कुण्डैकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजनाम्बरौ फलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मदां रक्षाकुलनिहन्तारौ त्रागीतान्नो रघुत्तमौ आत्तसज्जतनुजा स्पृशा वक्षया सुगनसङ्गसङ्गिनौ रक्षणामिं रामलक्ष्मणा वक्षतापति सदैव गच्छताम् तन्नद्ध कवची खड्गी चापमण्डरो युव गच्छन् मनोरथानश्च रामपादुतलक्ष्मणः रामोदाश्रतिशूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थ पुरुष पूर्ण कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेश पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभ श्रीमान् प्रमेय पराक्रमः इत्येतानि च मन्नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं यप्राप्नोति संशयः रामं दूर्वादृश्यामं पद्माक्षं पीतवासं स्तवन्ति नाम पृथिव्यनते संसारिणौ नरा।

0: أرارتك كم؟
1: جی
0: नारायण पर्यत अगेन लॉक्ड इटसेल्फ चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो जात श्रोत्राद्वयश्च
1: श्रोत्राद्वयश्च तुम का आगमन है जाए तो नैवेद्य समझो भोग लगा दी।
0: हाँ लगा रहा था। देखने ना हरि ओम नाभ्यासी दंत्रिशुम शेषो द्यो हो समर्थताभ्याम मूर्धशा श्रोत्रादता लोका नकल्पयन्ना अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम इच्छाम देहि च पार्वती पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधव शिव भक्त च स्वदेशो गुणत्रयम् ओम मनः सोमनः सोम समानः
1: ओम ओम नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोकिनी व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम मा जाहा फलि निर्जा फला पुक्पादाश पुक्पिणी बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त वग्गुहसः ऋतुप्लवदल पत्राणि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अथारार्थित्यम्
0: Where's the light?
1: अथा
0: ओके फाउंड इट।
1: परंपरा वाली आरती बोलनी सुन।
0: हाँ जी हाँ जी जो आप सुबह गाते हो
1: ओम प्रजा अस्तु श्री मंगलानि भवन्तु।

0: हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय, ताजगे आनंद की जय, हिंदू धर्म सम्राट स्वामी श्री माधवानंद गुरुजी महाराज की जय, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद गुरुदेव की जय, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवतार गुरुजी महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, मात पिता सद्गुरुदेव की जय, नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो, यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि यस्यां दुर्दक्षिणायां पते पते मन्त्रहीनं गृहहीनं भक्तेन उदरेश्वराय यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं ददस्तु मे, आवाहनं न जानामि न जानामि त्वार्जनं, पूजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर, मृत्युञ्जय महादेव त्राय मां शरणागतं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं गर्भमन्दनैः भगवते सांबदाशिवाय नमः, स्फटिक महेश्वर शिव परिवार देवताभ्यो नमः, प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते जलमादाय ओ मध्य पूर्वचार देवंग्रह गुण गण विशेष विष्टायाम शुभ पुण्यतु वादो यजमान आदो अच्युत गोत्रोत्पन्नस्य परम पूज्य स्वामी वर्यः सर्वेषां भक्तजनानां अद्य दिने षडंग रुद्रा अभिषेक स्फटिक महेश्वर देवताः प्रियतां नमः। तत्सत् सांब शिवार्पणमस्तु। विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। स्वामी जी वो न्यास के लिए पहले वो स्तोत्र चालू कर दिए थे। ओम मनो ज्योतिर ज्योतामास्य ब्रह्मस्पदरजन्म मंदानोत्प्रष्टं जद्दिंगोतिमात् विश्वे देवासै महा तयन् दामो प्रतिष्ठ हृदयाय नमः। अभूतिकनिजपदाजनानां प्रतिविम्बाय मुखा जब्बा मुखा जम्मा सब्बा जब्बाय वर्मजियाना प्रभानवद्रामच्चद्रसे स्वाहा मूर्धानन्दे प्रतिप्रतिभिष्मा नरमृदाज मृत्युंजय महादेव त्राय मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं गर्भमन्दनैः भगवते सांबदाशिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि।
1: ब्रह्मणे नमः। नमो नारायण
2: प्रणाम
1: स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महेन्महेशा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुदेव भगवान् ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शम्भो। सागरपुर जी महाराज।

that God has given to this all, Jivatma, to the humans. But only when this Jivatma enters into the human body, it means not that can be the holy already. That we don't know what you are thinking, what I am thinking. But in this hall where we are sitting, there are two who knows everything. आप इस कमरे में हॉल में बैठे आश्रम में तो आपको पता है आपको पता होना चाहिए कि इस हॉल के अंदर में दो ऐसे हैं जो कि आपके मन की बात आपके विचार आपके फीलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो दोनों ही जानते हैं आप नहीं छुपा सकते हो एक तो है भगवान भगवान सब कुछ जानते हैं कि नहीं जानते आप झूठ बोलोगे आप ये करोगे आप तो भगवान जानता है भगवान देखता है एक महात्मा आए और उनके पास दो भक्त आए दो डिसाइपल्स दे वॉन्ट टू बिकम द डिसाइपल ऑफ द महाराज कि गुरुजी हमें मंत्र दीजिए हमें आशीर्वाद दीजिए मेरे को शिष्य बनाइए तो गुरुजी ने कहा ठीक है परीक्षा कि हाँ कहिए गुरुदेव क्या परीक्षा कि दोनों एक एक कबूतर पकड़ के लेके आ जाओ गए दोनों एक कबूतर पकड़ के लेके आ गए तो गुरुजी ने कहा कि आप दोनों जाओ चक्कू लेकर के और कबूतर को मार के आ जाओ लेकिन उस जगह जाकर के मारना कि कोई उसको देखे नहीं एक गया बाथरूम में जाके उसकी गर्दन काट के आ गया ले गुरु जी कि किसी ने देखा कि नहीं किसी ने नहीं देखा दूसरे को कहा ले भाई तुम भी तरह जा वो गया बाथरूम में गया वापस आया कि गुरुजी आपने कहा कि कोई नहीं देखे वहां लेकिन मैं तो देख रहा हूं तो तेरे आंख पट्टी बांध ले जा पट्टी बांध के गया वापस फिर आ गए वापस के गुरुजी आपने कहा कोई नहीं देखता है मेरे तो आंख के पट्टी बांध दी लेकिन कबूतर तो देख रहा है कि मैं उसको मार रहा हूं कि उसकी भी पट्टी बांध दे गए वापस जाकर के वापस आ गया कि गुरुदेव मेरे आंख की पट्टी बांध दी कबूतर की आंख की पट्टी बांध दी लेकिन भगवान तो देख रहा है भगवान की आंख मैं कैसे बांधू तब कहा तू पक्का चेला है बेटा तुम्हारे को मंत्र दीक्षा देंगे और उसको कहा ला इधर कबूतर को उसको गुरुजी जिंदा करके उड़ा दिया तो उसी प्रकार दैट इज ए स्टोरी अबाउट अ पिजन एंड यू नो ऑल तो फर्स्ट दैट गॉड नोज व्हाट यू आर थिंकिंग व्हाट यू वांट व्हाट इज योर प्रॉब्लम व्हाट यू वांट टू डू इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा और दूसरा इस हॉल के अंदर में जो है वो जानता है और वो ये है आप खुद जानते हो तो भगवान जानता है और आप जानते हो ये दोनों ही जो है इसी हॉल के अंदर में इसी आश्रम के अंदर में जो बैठा है वो कर रहा है तो उसी प्रकार जब मनुष्य का When the human soul enters into the human body, God gives us the freedom. But then it is like that you will be bounded to the karma. And that karma, what we call the action.
where the action, it will be reaction. Or where the reaction, there will be the action. Good reaction is good action, good action is good reaction, bad action, good and bad, paap and punya, keval manushya ke saath mein hota hai. The manushya, the human, if they do not follow the principles, then the Rishi Munis, they gave these rules. Purnima, Igyarasa, Amausya, etc., etc., all these days is called the holy, and on this day you should not do. And so, in India, in our culture, ancient cultures, now they are different. In this Kali Yuga, there are more different religions. And every religion they have made themselves. So, there is a call man-made God, man-made religion, and God-made religions. The God-made principles and man-made this. Man-made world is not perfect, but God-made world is a perfect. Therefore, in these principles, a human day and night, by each and every step, by each and every look, we should know what I am doing, what I am thinking, so that I will be perfect, I will pass as a human. Then this soul will go to the Brahmaloka, otherwise somewhere jitna karam hai, us karam ke aadhar par phir hum aayenge. So this city, Jaipur, is a very spiritual city. On day after tomorrow's or 14th, you all Europeans are here, I think you should go and see the festival of the Shravantis in Jaipur. Hota hai ki nahi? Kab hai wo? Kab hai? Tarikh kaun si tarikh hai? 13 tarikh ko hai? Ke 14 ko? Nahi, wo to ekam dooj bheedi ho gayi na. 13 tarikh ko and somewhere. I think these people should stay here. Now that all roads are blocked, and you go to see that festival of this day. It comes once a year, this festival. It is a festival of the divine Parvati and Shiva. Yes? So you should, I think, don't miss this. It will be very nice. There are many foreigners are there, many people are there. It's a beautiful festival, beautiful. So don't miss this, perhaps. We have here guide. We will ask the guide that he can bring you there as a tourist. And something, I think you should do it. In the morning till the noon. Itna hai na? Dupair mein. Aha. From 3 to 5 afternoon, and then you should come to the Kailash. Well, I am not talking about my birth, but somehow it happens. It is coincident. So this is the day of my birthday. Exactly on that time, so I was also born on Shravan ki Tees. And that day is a special eating they have. So people are trying to bring me this, they did not know, but that is a different thing for children to eat. But each and every event which is
according to the spirituality

दीपनम सजते सर्वं संध्या दीपं सर्व सत्यम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। ओम ब्रह्मानंदम परम सुकरम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम्।

सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सब ऋषि मुनि महात्माओं की, माता पिता गुरुदेव

0: Come a little back. Thoda. मेरे पप्पी से आओ यहाँ मेरे पास में. अब दोनों एक साथ साथ रहो बेटा. और मास्क निकल निकाल दो. साइड करो स्लो. थैंक यू.
1: श्री दीपनायन भगवान की जय. देवेश्वर महादेव की जय.
0: थोड़ा दूर है.
2: हिंदुम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय.
1: श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमन स्वामी महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय.
2: Without Guru, we cannot know Brahma, Vishnu, Mahesh. Actually, Guru is not only Brahma, Vishnu, Mahesh. Guru is also Par Brahma, Parameshwar. Om.

0: अनंत श्री विभूषित परिभज काचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय।

पुञ्जामुलं गुरुपदं मान्त्रामुलं गुरुवाक्यं मोक्षमुलं गुरुकृपम् ॐ दीप ज्योति परब्रह्म दीपं सर्वमोहनं दीपनं सजति।

जय श्री देव पुरुष महादेव की जय धर्म सम्राट स्वामी मदवानंद जी भगवान की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय श्याला।